FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आदर्शों का देश, संस्कृति और परंपराओं का देश हमारा भारत। असम से लेकर गुजरात तक मेरे देश की बाहें फैली हुई हैं। कश्मीर और हिमाचल भारत का माथा है। इस मुल्क की गोदी में पवित्र नदियां बहती हैं। दूर दक्षिण में महासागर भारत देश के पैर धोते हैं। इस देश की माटी अन्न के रूप में सोना उपजाती है और समस्त भारतवासियों को जीवन दान देती है।

जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य की यही धारणा होती है कि उसे जीवन में बहुत दुख मिला, पिछला साल दुखों में ही बीत गया। आखिर मन ही मन इस तरह दुखों को भोगने के पीछे कारण क्या है?

रहस्य को जानने की कोशिश होती है तो मालूम होता है कि सुख दुख तो जीवन की माया है और यही माया का पर्दा मानव को ईश्वर से दूर करता है, ईश्वर को भुला देता है और इसी कारण वह दुख भोगता है। ईश्वर शुद्ध सत्व है और शुद्ध सत्व में दुख रह ही नहीं सकता, इसलिए संसार के माया मोह से थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु की भक्ति में लगाइए, माया का पर्दा भी हटेगा और दुख भी कम लगने लगेंगे।

भगवान पूर्ण चैतन्य है, उनकी सत्ता अखंड है, चारों ओर व्याप्त है। यदि किसी भी प्रकार से जीव भगवान की अखंड सत्ता में मिलकर उनसे एक हो जाए तो वह पूर्ण हो जाता है, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र से मिलकर समुद्र बन जाती है, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। एक बार भगवान की शरण में जाने वाला मनुष्य कभी उनके चरणारविंदों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वह तो परमपिता परमात्मा की भक्ति में ही तल्लीन हो जाता है, जीवन में सब कुछ पा जाता है।

जिन्होंने संसार का सहारा छोड़ दिया है उन्हें प्रभु ने संभाल लिया। भगवान तो भक्त की बांट जो होते हैं, कोई भक्त मुझे पुकारे, उन्हें मनुहार पसंद नहीं है। तुम रीजहू स्नेह सुठिथोरे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को मात्र 5 दिन के तप से प्रभु ने अमरलोक दे दिया। अग्नितुल्य तप्त स्तंभ में प्रहलाद ने भगवान के दर्शन किए। परमात्मा से मिलने के लिए ना तो साधन की अपेक्षा है और ना समयावधि ही निश्चित है। प्रभु तो तत्क्षण प्रकट होकर दया करते हैं। कोई जान ही चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं। भगवान सेवक के कल्याण का दायित्व स्वामी की तरह निभाते हैं, माता की तरह भक्त का रक्षण और पालन करते हैं।

हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे आपके स्मरण में, आपके पूजन और आराधन में परम सुख प्राप्त होता है। आप ही तो जग के सृष्टा हैं, नियंता हैं, इस जग के पालक हैं, रक्षक हैं। आप मुझे अपने से दूर भी हटा देंगे तो भी मैं कभी भी आपके चरण कमलों से दूर नहीं जाऊंगा। जैसे माता पिता रुष्ट होकर अपने बालक को दूर हटा देते हैं, तब भी वह बालक रोता हुआ अपने माता पिता के चरणों में ही आता है, उन्हें छोड़ता नहीं है। उसी तरह प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ, आपसे दूर नहीं जाने वाला।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। सुरेश वाटकर के स्वर में प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन

नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अभी आप सुरेश वाटकर के स्वर में श्री रामचरितमानस कहानी सुन रहे थे। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आज का चिंतन,
1: अपना बचपन याद आता है, वो उम्र बड़ों से लाड़ प्यार तो कभी फटकार पाने की होती है। बालक जब कभी कोई गलती कर देता है तो माँ उसे कहती है, ये तुम्हारी पहली गलती है, अतः क्षमा कर रही हूं, अब करोगे तो पापा से बतला दूंगी। बालक स्वीकृति में सिर हिला देता है और अपने कक्ष में चला जाता है। बड़ों के जीवन में झांक कर देखा तो वहां सब उलट पलट है। गलती पकड़ी जाने पर भी आजकल के बड़े उसे अपनी गलती मानते नहीं है, फलतः क्षमा कर देने या क्षमा याचना की बात ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी कतिपय समाजों में ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक बार गलती की और क्षमा भी मांगी है। संसार में क्षमा कर देने वाले और क्षमा याचना करने वाले लोग हर वर्ग में जीवित हैं, शायद इसलिए संसार चल रहा है। क्षमा मांगने या करने का क्रम सनातन है। यहाँ हजारों वर्ष पूर्व से लोग त्रुटियां कर रहे हैं और क्षमा पा रहे हैं, यह शत प्रतिशत उचित मार्ग है वर्तमान संसार का। महापुरुष बुद्ध के समय काल का एक प्रसंग है। देश में भीषण अकाल पड़ा, आम तो आम, खास आदमी भी अन्य

0: के अभाव में तड़पने लगे। एक संत कई दिनों से भूखा फिर रहा था। उसने एक सूखे वृक्ष के नीचे दो महावतों को खाना खाते हुए देखा। वे एक कपड़े पर कुछ रोटियां रखे हुए थे, एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी भी था। वे सूखी रोटियां आनंद से चबा रहे थे, बीच बीच में चुल्लू में पानी लेकर गले में उतारने की जुगत भी बना रहे थे। संत की दृष्टि में भोजन और जल दोनों जूठे और अग्राह्य थे, किंतु उसे अपना जीवन बचाना था, अतः उसने वात्सल्यपूर्वक दो रोटियों की याचना की। महावतों ने मन को विशाल करते हुए दो रोटियां संत को दे दी, साथ में याद दिलाया कि महाराज ये जूठी हैं, क्षमा करना। संत कुछ न बोला, वहीं बैठ गया और आगामी दिनों की साधना को ध्यान में रखते हुए रोटियां खाने लगा। कुछ समय बाद संत उठा, महावतों को धन्यवाद दिया और चलने लगा। तब वे बोले, महाराज पानी तो पी लीजिए। इस बार संत ने लज्जाते हुए कहा कि नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, वो जूठा है। उत्तर सुनकर महावत जोर से हंस पड़े, फिर कहने लगे, जूठी रोटी तो खा ली, फिर जूठा पानी क्यों नहीं पीते। संत क्षुधा तृप्ति से ज्ञानाचार का आलोक पा चुका था, अतः सवात्सल्य बोला, शरीर की साधना आगे भी नियमित रखने के लिए आहार आवश्यक हो पड़ा था, अतः एक बार गलती कर स्वेच्छा से अपवाद मार्ग पर चला गया। अब दूसरी त्रुटि करूंगा तो ईश्वर माफ नहीं करेंगे। शुद्ध पानी कुछ ही क्षणों बाद आगे सरोवर में मिल जाएगा। संत के उत्तर से महावतों को सन्मार्ग मिला ही, साथ ही एक समस्या का समाधान भी हो गया कि त्रुटि एक बार माफ की जा सकती है, हर बार नहीं। और जो त्रुटि किसी बड़े और कल्याणकारी हेतु के लिए की जाती है, उसे तो सौ सौ हाथों से माफ कर देना चाहिए। तीसरी बात यह कि अपवाद मार्ग भी एक बार क्षम्य माना गया है।
1: ये था आज का चिंतन। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:50 पर देशगान होगा। कुछ बातें कुछ गीत, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:20 पर। फिल्मों से चुने हुए सदाबहार गीत हम आपको सुनवाएंगे गीत गंगा कार्यक्रम में सुबह 7:35 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर।

सुबह 9 बजे से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे, जिसे हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

महिलाओं के लिए शक्ति रूपा कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 10:05 पर। शक्ति रूपा में मन की बात करेंगे, महिला उद्यमिता आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। साथ ही चर्चा होगी कौशल विकास से आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर। छोटी मोटी काम की बातें और होगी 100% की एक बात।

मिट्टी के स्वर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 11 बजे से। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। युववाणी में आज की बात होगी स्थानीय उद्योगों के विकास में MSME का योगदान विषय पर। साथी होगा क्रम साहित्य सरिता, तरुणों की पसंद के गीत सुनवाए जाएंगे, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और होगी अमृतवाणी। माटी के स्वर सुनिएगा शाम 6:00। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। आज किसान वाणी में आप सुनेंगे आकाशवाणी गांव में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम और आपको सुनवाएंगे लोकगीत।

मेरी पसंद कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। गैर फिल्मी गजलें पेश करेंगे रात 8:30 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9 बजे से, जिन्हें हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। हेलो छिंदवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आज भोपाल में होगा उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 का भव्य आयोजन। जिले के उद्यमियों से अधिक सहभागिता की अपील। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र छिंदवाड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर 27 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से रविंद्र भवन भोपाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 द हार्ट ऑफ इंडिया द हार्ट ऑफ ग्रोथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं माननीय MSME मंत्री की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के MSME इकाइयों के उत्पादों, नवाचारों एवं क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। महाप्रबंधक ने जिले के उद्यमियों एवं संबंधित हितधारकों से आयोजन में सहभागिता करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी गरिमामय उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

उपसंचालक उद्यान छिंदवाड़ा श्री एमएल उइके ने बताया कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना के तहत जिला रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाना है। जिला रिसोर्स पर्सन का कार्य प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने वाले किसानों एवं उद्यमियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी के पास खाद्य इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन एवं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 1 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

0: से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है।
2: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
3: Freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: Nexa.
5: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में, अरे वाह।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: Experience grand in every drive with a Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement, they deserve presence. This is your final opportunity to pre-book the Grand Vitara at just rupees 8,999 per month. Yes, rupees 8,999 per month. And not just that, enjoy all at an effective price starting at rupees 9.82 lakhs. Step into a world of refining performance and intelligent design. Six airbags as standard, premium comfort, advanced hybrid technology crafted to stand apart. This month, make it yours. Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
9: सुनो ना।
10: हाँ?
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
10: तो रोका किसने है? हाँ?
9: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
10: मुझसे।
9: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
10: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
9: पर उससे मेरा क्या फायदा?
10: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
10: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
9: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
11: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल नहीं।

0: डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं

0: उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति की अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
3: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले ये भोपाल, उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही है। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल

भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। कुछ बातें कुछ गीत,

0: कुछ बातें कुछ गीत।
1: आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुन रहे अपने सभी श्रोताओं को आपके दोस्त धीरेंद्र दुबे का नमस्कार।

श्रोताओं, मानसून की आहट सुनाई देने लगी है। हम अक्सर सुनते रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं कि मानसून आने वाला है। मई के महीने की तपती झुलसती गर्मी से परेशान होने के बाद हर किसी को जून के महीने में मानसून का इंतजार होता है और हमारे मन में ये जिज्ञासा भी होती है कि ये मानसून क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये मानसून क्या होता है। मौसम के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ये हवाएं 6 महीने दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं और 6 महीने उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं। हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं से और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से वर्षा होती है। सितंबर के महीने तक वर्षा का वेग कम होने लगता है, इसलिए कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। वर्षा ऋतु का इंतजार भला किसे नहीं होता। गर्मी के तपिश भरे मौसम से हमें राहत दिलाती हैं बारिश की ये रिमझिम बरसती बूंदें। बारिश का जितना इंतजार अपनी लहलाती फसल के लिए एक किसान को होता है, उतना ही इंतजार धूप में तपती इस धरती को भी होता है। जब गर्मी की तपन झेल रही धरती पर रिमझिम फुहारें पड़ती हैं तो धरती की छाती खिल जाती है और धरती पुनः तैयार हो जाती है सुख बरसाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, जगत के कल्याण के लिए। परोपकार का इससे अच्छा उदाहरण और कहां देखने और सुनने को मिलेगा कि गर्मी में धरती तपती है, जलती है और जब वर्षा की रिमझिम बूंदें इस पर पड़ती हैं तो धरती उन बूंदों को पीकर अपनी छाती फाड़कर उन्हें झरनों का सुंदर रूप दे देती हैं। अब तो बस प्रतीक्षा है बादलों के झूम कर बरस जाने की। ए बादलों, कहाँ हो तुम? आ जाओ, पूरी धरती को अपने आगोश में ले लो और खूब झूम कर बरसो, इस प्यासी धरती की प्यास बुझाओ।

0: कुछ बातें कुछ गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा, और इस कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के गीत के साथ। गीत को लिखा है मजरूह ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और स्वर है लता मंगेशकर का।

0: अजय जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: गीत गंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सीता और गीता फिल्म का गीत। गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: दो दो कोचिंग बदल ली, लाखों खर्च कर दिए, फिर भी नीट क्लियर नहीं हुआ।
1: अरे समर्पण इंस्टीट्यूट गया क्या?
0: नहीं, वहाँ क्या खास है?
1: ये परासिया नाके पर है, जहाँ है अनुभवी शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं और ड्रॉपर्स पर खास ध्यान। पढ़ाई इतनी आसान कि समझ खुद आने लगे।
0: तभी पूरे शहर में नीट सक्सेस के लिए समर्पण इंस्टीट्यूट की चर्चा है।
1: हाँ, जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। क्लासेस प्रारंभ, समर्पण इंस्टीट्यूट, परासिया नाका, VIP नाका, छिंदवाड़ा।
0: बिल्कुल।
2: अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गीत। गीत को लिखा था मजरूह ने और संगीतबद्ध किया OP नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम नगर फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं SD बर्मन।

किशोर कुमार, येसुदास और लता मंगेशकर की आवाजों में आइए सुनते हैं त्रिशूल फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही आज की गीत गंगा यहीं संपन्न होती है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने

0: बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज

0: पृथ्वी पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय

समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम था साजन। और आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म का गीत। स्वर है उदित नारायण का, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन का।

अभिजीत की आवाज़ में बेवफा फिल्म का गीत सुनिए। गीत की रचना की है समीर ने और इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

सोनू निगम, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, शंकर महादेवन और अनमोल की आवाजों में आइए सुनते हैं मेला फिल्म का गीत। संगीत है अनु मलिक का और इस गीत के शब्द लिखे हैं देव कोहली ने।

मोहब्बतें फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत रचना जतिन ललित की है।

0: हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाल।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक बेटी की यादों में उसके पिता
5: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त धीरेंद्र दुबे को दीजिए कार्यक्रम से चलने की आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी। एक

स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

0: एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।
1: यादों

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो। ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन

रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आइए सुने गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं।
3: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली

बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गाँवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरक्वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम शक्ति रूपा।

स्वागत है सखियों आपका एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति रूपा में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी इंदु तांडेकर। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी आधी आबादी का भी आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि पारंपरिक रूप से महिलाओं को हमेशा आर्थिक ज़रूरतों के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था और आज भी कई महिलाएं इसी स्थिति में हैं, जिसे बदलने के लिए महिला उद्यमिता बहुत कारगर सिद्ध हुई है। सखियों, महिला उद्यमिता आज के आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है, क्योंकि महिला उद्यमिता केवल एक व्यवसाय शुरू करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्य धारा में लाने का एक क्रांतिकारी कदम है। सखियों, अब थोड़ा महिला उद्यमिता को समझ लेते हैं। महिला उद्यमिता का अर्थ है महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू करती हैं, रोजगार का सृजन करती हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। जब एक महिला स्वयं का व्यवसाय शुरू करती है तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका और सम्मान दोनों बढ़ता है। वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और परवरिश एवं सुविधाएं देने में सक्षम होती है। इसके साथ ही सखियों, अपना स्वयं का सफल व्यवसाय चलाने से महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे समाज में एक रोल मॉडल बनकर उभरती हैं। सखियों, महिला उद्यमिता से महिलाएं आर्थिक सशक्त होती हैं, जिससे लैंगिक असमानता कम होती है और समाज में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान मिलता है। एक महिला उद्यमी केवल स्वयं के लिए रोजगार नहीं ढूंढती, बल्कि वह कई अन्य लोगों विशेषकर महिलाओं को रोजगार देकर बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करती हैं। अब महिलाएं केवल अचार पापड़ या सिलाई कढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, वे आईटी, बायोटेक, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, फैशन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में भी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं। सखियों, देश में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा और गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, लखपति दीदी योजना, महिला उद्यमिता मंच, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आदि। यद्यपि इस दिशा में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उन्हें वित्तीय साक्षरता और पूंजी की कमी, बाजार की सीमित जानकारी, समाज की रूढ़िवादी सोच, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व, दोहरी भूमिकाएं, कौशल विकास के कम अवसर जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं को न केवल तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सहायक माहौल भी मिलना चाहिए, सही बाज़ार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आइए सखियों, अब हम हमारे छिंदवाड़ा जिले की कुछ महिला उद्यमियों के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने महिला उद्यमिता द्वारा न केवल स्वयं का बल्कि हमारे जिले का भी नाम रोशन किया है। छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्रामों जैसे सावरवानी, चोपना, काजरा, देवगढ़, धूसावानी और चिमटीपुर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पतालकोट और चौरई जैसे वनवासी व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख कर खुद के सेंटर शुरू किए हैं। सौंसर क्षेत्र की महिला उद्यमी डॉक्टर भाग्यश्री ने पर्यावरण अनुकूल उद्यमिता की एक बेमिसाल कहानी लिखी है। छिंदवाड़ा के ग्राम राजाखो ढाना की चार आदिवासी बहनों ने महुआ के फूलों से कुकीज और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने का एक बेहद अनोखा और सफल स्टार्टअप शुरू किया है। सखियों, महिला उद्यमिता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया वह मजबूत कदम है जो पूरे समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। जब एक महिला सशक्त और आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार, समाज और अंततः पूरा देश आत्मनिर्भर बनता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना महिलाओं पर उपकार नहीं, बल्कि एक समृद्ध और विकसित भविष्य

के लिए सबसे ज़रूरी निवेश है। सखियों, ये थी हमारी आज की मन की बात, महिला उद्यमिता आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। और अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दो दो कोचिंग बदल ली, लाखों खर्च कर दिए, फिर भी नीट क्लियर नहीं हुआ।
1: अरे समर्पण इंस्टीट्यूट गया क्या?
0: नहीं, वहाँ क्या खास है?
1: ये परासिया नाके पर है, जहाँ है अनुभवी शिक्षक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं और ड्रॉपर्स पर खास ध्यान। पढ़ाई इतनी आसान कि समझ खुद आने लगे।
0: तभी पूरे शहर में नीट सक्सेस के लिए समर्पण इंस्टीट्यूट की चर्चा है।
1: हाँ, जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। क्लासेस प्रारंभ समर्पण इंस्टीट्यूट, परासिया नाका, VIP नाका, छिंदवाड़ा।
0: बिल्कुल।
2: सखियों, महिला उद्यमिता और कौशल विकास के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि कौशल विकास वह चाबी है जो महिलाओं के भीतर छिपी उद्यमशीलता की क्षमता को पहचान देती है।

जैसे कि वो किसी व्यक्ति की क्षमताओं, हुनर और ज्ञान को इस प्रकार विकसित करना जिससे वह किसी काम को अधिक कुशलता और सटीक तरीके से कर सकता है, कौशल विकास कहलाता है। सक्यों शिक्षा हमें सैद्धांतिक ज्ञान देती है, जबकि कौशल विकास हमें उस ज्ञान का व्यावहारिक रूप से उपयोग करना सिखाता है। यानी कौशल विकास किसी भी व्यक्ति के हाथों को हुनरमंद बनाकर उसके जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने का सबसे सशक्त माध्यम है। सखियों, कौशल विकास महिलाओं को केवल घरेलू कामों से बाहर निकालकर व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार करना होता है। जब कोई महिला किसी विशेष विधा जैसे डिजिटल कोडिंग, फूड प्रोसेसिंग या वित्तीय प्रबंधन में कुशल होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उसे एक नया व्यवसाय शुरू करने का जोखिम लेने की ताकत देता है। आधुनिक कौशल में केवल उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, GST और ऑनलाइन बैंकिंग भी सिखाया जाता है। कई महिलाओं के पास पारंपरिक हुनर जैसे सिलाई, कढ़ाई, जैविक खेती या कलाकृति होता है। कौशल विकास कार्यक्रम उन्हें सिखाते हैं।

देकर उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। इससे अमीर और गरीब के बीच आर्थिक खाई कम होती है। जब एक युवा हुनरमंद होकर अपनी सूक्ष्म या लघु उद्योग इकाई स्थापित करता है तो वह केवल स्वयं के लिए आजीविका नहीं कमाता बल्कि स्थानीय स्तर पर कई अन्य लोगों को भी रोजगार देता है। सखियों, कौशल विकास और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का आपस में गहरा संबंध है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के दो ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो मिलकर आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग मजबूत करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की रीढ़ है। हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। सखियों, भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कला, शिल्प, कृषि से जुड़े उद्योग बिखरे हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा एवं एक जिला एक उत्पाद जैसी पहलों के तहत जब इन पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक टूल्स, पैकेजिंग और ई कॉमर्स का कौशल दिया जाता है तो उनके स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंचते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और शहरों की तरफ पलायन कम होता है। सखियों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डेटा साइंस तेजी से पारंपरिक नौकरियों की जगह ले रहे हैं। ऐसे समय में आर्थिक सशक्तिकरण को बनाए रखने के लिए अपने मौजूदा कौशल को और बेहतर और आधुनिक बनाना होगा, साथ ही बदलते बाजार के अनुसार पूरी तरह से नया कौशल भी सीखना होगा। निरंतर कौशल विकास ही दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। सखियों, ये थी आज की चर्चा, कौशल विकास से आर्थिक सशक्तिकरण। और अब आइए जुड़ते हैं मनोरंजन से और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: सखियों की बातों की। सखियों, अब गर्मियों का मौसम खत्म होकर बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ऐसे मौसम में नवजात शिशु से लेकर 6 महीने तक के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। बेशक मानसून सबसे सुखद और सुहावनी ऋतुओं में से एक है, जो चिलचिलाती गर्मी के बाद ठंडी हवा का एक सुखद झोंका लेकर आती है। खिड़की पर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ सुनना कितना आनंदित कर देता है। लेकिन इस मौसम में घर की हवा नम हो जाती है, जिससे कई तरह के फफूंद और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। परंतु थोड़ी सी समझदारी और अतिरिक्त देखभाल के साथ मानसून में शिशु की देखभाल की जा सकती है। सखियों, तापमान में उमस होने के कारण शिशुओं को सूखा और साफ रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उमस से बैक्टीरिया पनपते हैं और शिशुओं में संक्रमण हो सकता है। इसलिए उन्हें अच्छे से नहलाएं और ढीले ढाले कपड़े पहनाएं। शिशु की बाहों, गर्दन और डायपर वाले हिस्से के नीचे किसी भी प्रकार के फंगल संक्रमण पर नज़र रखें। मानसून के दौरान बढ़ी हुई उमस के कारण त्वचा में नमी जमा हो जाती है, जिससे डायपर रैशेस और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए डायपर नियमित रूप से बार बार बदलना ज़रूरी है। मानसून की नमी भरी हवा से त्वचा और श्वसन संबंधी संक्रमण हो सकते हैं, जिससे सर्दी और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। सखियों, बरसात के मौसम में उच्च आर्द्रता और तापमान में अचानक बदलाव आते हैं, जिससे शिशुओं में संक्रमण और असुविधा का खतरा बढ़ जाता है। घर के अंदर की जगह को सूखा और साफ रखें, नमी सोखने वाले उपकरणों का उपयोग करें, बारिश के दौरान खिड़कियों को बंद रखें ताकि वे अधिक नमी से बच सकें। सप्ताह में कम से कम 2 बार बिस्तर की चादरें बदलें, शिशुओं के कपड़ों और बिस्तर को धोने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें। यदि आर्द्रता अधिक है तो रोज़ स्नान ना कराकर स्पंज से स्नान कराना ही काफ़ी होता है। बच्चों को कपड़े पहनाने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से सूखे हों। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों पर ध्यान देना ज़रूरी है। यदि शिशुओं में 24 घंटे बाद भी यही लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर को दिखाएं। यदि शिशु को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या किसी कारण से पानी पिलाना पड़ रहा है, तो हमेशा पानी को उबाल कर ठंडा करके गुनगुना ही इस्तेमाल करें, और दूध पिलाने के बर्तनों को कीटाणु रहित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को छूने से पहले हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज़र का उपयोग करें। कुल मिलाकर सखियों, मानसून को सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए अपने शिशु को सूखा रखें, बार बार डायपर बदलें।

मच्छरों से बचाव करें, शिशु की स्वच्छता बनाए रखें, बार बार स्तनपान कराएं, त्वरित सफाई के लिए वाइप्स का उपयोग करें। सखियों, हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन नवजात शिशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नवजात शिशु देखभाल पद्धतियां हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। सखियों, ये थी आज की छोटी मोटी काम की बातें, और अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

साथ आगे बढ़ता है उसी के सपने एक दिन सच्चाई बनते हैं। विश्वास रखिए, हर नया सवेरा नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आता है। और सुनिए अब एक और प्यारा सा गीत।

सखियो, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में इसी वादे के साथ। दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सखी इंदु तांडेकर को। नमस्कार।

ये था महिलाओं का अपना कार्यक्रम शक्ति रूपा FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लखन लाल रजक का गाया हुआ ये लोकगीत।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजीव सिन्हा का गाया हुआ ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे।

देश के सुरीली धड़कन विविध भारती और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देवबर्मन की आवाज़ों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देवबर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देवबर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देवबर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्री

संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 19

सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं। सुन

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं, और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के

0: ये ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के फूल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत, गुलशन मावरा ने से लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोज़ाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें, आज की इबारत है यार दो

ते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताज़ा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज़्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे, और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती ज़रूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारमा छूटता है, साथी संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवर चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं, या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर, या फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर

चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं आज का इतिहास। मित्रों, 27 जून 1838 में भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन को संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया था। और 1967 को आज ही के दिन विश्व का पहला एटीएम लंदन के बार्कलेज बैंक में स्थापित किया गया। चलिए अब जान लेते हैं कल के आकर्षण। कल आज की बात में जानेंगे नई तकनीकों का दैनिक जीवन पर प्रभाव, एक ही फिल्म में सुनेंगे फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने, फिर जानेंगे आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी। मित्रों, अब वक्त है आज की अमृतवाणी जानने का। मित्रों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो मित्रों, इसी अमृतवाणी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त नम्रता सूर्यवंशी को। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद युववाणी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 6 बजे हैं और हम लेकर आए हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन के स्वर में ये लोक भजन।

0: Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
1: Nexa.
2: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।

श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं शिव कुमार पटेल और साथियों का गाया एक लेद।

0: श्रोताओं, संगीता उपाध्याय के गाय इसी लोकगीत के साथ अब संपन्न होता है कार्यक्रम माटी के स्वर। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 6:30 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बंटी और बबली से।
1: दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: 36 पे आएगी।
1: It's Valentine's Day. Groove.

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्में अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, हेमंत सरदेसाई और आदेश श्रीवास्तव को। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं बीबी नंबर 1, इस फिल्म का गीत।

श्रोता, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल का लिखा हुआ, आवाज़ है सुनिधि चौहान की और फिल्म का नाम चमेली।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, हद कर दी आपने, इस फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, आनंद राज आनंद, विनोद राठौर, मोहम्मद अजीज और विभास शर्मा की।
1: चलो हो जाए शुरू।
2: हो जाए
1: तो लेडीज फर्स्ट।
2: ओके।

0: चीज है
1: यार, गेम खेलो, ये क्या कर रहे हो?
2: हद कर दिया आपने,
3: हद कर दिया आपने। इस फिल्म के इसी गीत के साथ अब संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी

0: के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित

0: लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 7:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ संदेश।
2: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
3: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
2: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
3: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
2: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
3: हाँ,
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।

0: नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोतों, शाम के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल से।

0: प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
2: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में दक्षिण कोरिया ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब

0: ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचे। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही है, यह एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही है।
1: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे, हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले सातों स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित

किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय जेल फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया
2: और कुलदीप भैया की राम राम।
1: किसान भाइयों, महीने के अंतिम शनिवार हम आते हैं किसी गांव में और वहां के लोगों का, वहां के किसानों का हालचाल आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। आज हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम है ग्राम ढाला, जो विकासखंड परासिया के अंतर्गत आता है। और खिरसाडो से आगे बढ़ते हुए हम इस गांव में पहुंचते हैं। इस ग्राम की दूरी हमारे छिंदवाड़ा जिले से है 30 किलोमीटर के लगभग। तो चलिए भैया, चलते हैं हम ग्राम ढाला।
2: बिल्कुल रजनीश भैया, ग्राम ढाला की ओर अब हम चलते हैं। हमारी गाड़ी भी आकाशवाणी की ओर से बिल्कुल तैयार है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की यात्रा जो आकाशवाणी गांव के अंतर्गत है
1: वो शुरू करते हैं ग्राम ढाला के लिए। चलो भैया, गाड़ी स्टार्ट करते हैं।

0: तो रजनीश भैया, जैसे ही हम ग्राम ढाला पहुंचे तो ग्राम पंचायत देखिए ना कितनी सुंदर है। इस पंचायत में देखिए कितनी चमकदार टाइल्स हैं। और सरपंच कक्ष में हम पहुंचते हैं और देख रहे हैं कि जो ग्राम के प्रथम नागरिक हैं वो विराजमान भी है। तो चलिए इनसे मुलाकात करें।
1: चलिए भी इनसे बातचीत करते हैं।
0: भैया राम राम।
1: राम राम राम राम।
0: तो सरपंच साहब अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मेरा नाम संतोष कुमार कवरेती है, मैं ग्राम पंचायत ढाला सरपंच, प्रथम ही मेरा चुनाव था।
0: चलिए, जब पहली बार व्यक्ति जो है वो सरपंच बनता है और काफी बड़ी पंचायत है आपकी, करीब करीब जैसा बोर्ड में लिखा हुआ है 2500 की आबादी का ये गांव है, तो ये पूरा गांव है या फिर एक दो टोले वगैरह भी हैं यहाँ पर?
1: ये एक गांव है और एक काना भैंसा मिलके दो गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनी है।
0: अच्छा
1: जी जी।
0: अभी हाल फिलहाल में ग्राम पंचायत की ओर से कौन कौन सी विशेष योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है जिनसे हमारे ग्रामवासी हैं उनको लाभ पहुंच रहा है?
1: भारत सरकार की जैसे भी लाडली योजना है, इसमें लगभग 350 लाडली बहना जो है उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और पेंशन जो है लगभग 185 लोग को पेंशन दिया जाता है जो सरकार की योजना है। और राशन 270 लोग को राशन दिया जा रहा है। और बीपीएल कार्ड यहाँ पे 227 जिनको निःशुल्क योजनाओं का लाभ मिलता है। इसी बार हमने माँ की बगिया में जो किसानों को लाभ देना था, 4 माँ की बगिया बनी है जिसमें आम के 100-100 पौधे सभी खेतों में स्वस्थ है।

0: लगे हुए हैं, बढ़िया शानदार है। और खेत तालाब जो पानी की बहुत समस्या है अभी सभी चारों ओर, तो हमने दो खेत तालाब बनवाए। एक खेत तालाब में तो सर पानी भी इतना निकला है कि गर्मी भर पूरा पर्याप्त पानी है उसमें।
1: ये खेत तालाब की आपने बात की सरपंच साहब, तो इस योजना के विषय में बताइए कि इसके लिए हमारे किसान की जमीन ली जाती है कि सरकारी जमीन पर ही खेत तालाब योजना चलाई जाती है?
0: खेत तालाब के लिए ये हितग्राही मूलक योजना है जो हमने 2.5 लाख के दो रोजगार गारंटी मनरेगा की तरफ से दिया गया था। तो हमारे यहाँ इस बार दो किसानों का सिलेक्शन हुआ था जिसमें हमने दोनों का निर्माण कार्य करवाया। एक में तो पर्याप्त पानी है, एक में थोड़ा कम है। जल संरक्षण के लिए ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है भारत सरकार का, इसमें भी ग्राम पंचायत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और चेक डैम का निर्माण भी किया जाता है हमारे यहाँ, दो चेक डैम भी है। और जल संरक्षण के लिए हम जैसे समय समय पर बोरी बंधान भी नदी तालाब में करवा देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और नाडेप बने हुए हैं, 100 फीट भी जगह जगह पर बनाया गया है। कचरे के लिए हर मोहल्ले में एक एक दो नाडेप, जहाँ सरकारी जगह है वहाँ पे बनवाया गया है। जन भागीदारी के, उनके सहयोग के बिना तो काम असंभव है, तो सभी के सहयोग से हम जल के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी वर्ष हमने 100 सर अभी मुनगे के पौधे तैयार किए हैं, तो हमको रोड लगवाना है, पंचायत द्वारा ही उसको लगवाया जाएगा। पिछले वर्ष भी हमने पंचायत तरफ से खुद तैयार करके पंचायत में ही हम तैयार करवाते हैं, और पिछले वर्ष भी हमने मुनगे के 100 पौधे स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया था, एक एक तो उन्होंने अपने घर पे लगाई हैं और वो है भी। और इस बार हम प्लान है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हम मुनगे के पौधे हम सरकारी जगह में रोड पे लगवा के उसको करवाएंगे, ताकि वो औषधि पौधा भी है। और अभी डिमांड भी है सर, आंगनबाड़ी में अभी सूचना मिली है कि उनकी पत्तियों का पाउडर अब मध्यान्ह भोजन में डालना है
1: जी,
0: तो उस उद्देश्य से एक आय का साधन भी हो जाएगा महिलाओं को, और जो पंचायत की एक्स्ट्रा जो आय होती है वो भी होगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास भी है, सभी जन सहयोग के माध्यम से ये काम को करेंगे।
1: सरपंच साहब, चूंकि आप काफी युवा हैं
0: जी
1: और पहली बार सरपंच निर्वाचित हुए हैं,
0: हाँ,
1: बाकी सब काम तो शासन की योजनाओं के माध्यम से चलते ही रहते हैं, लेकिन आपका अपने गांव के प्रति ऐसा कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं अपने गांव के लिए?
0: जी, मेरा ये है कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि वे आत्मनिर्भर गांव बनाएं।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि गांव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भरता ना रहे।
0: मैं खुद किसान हूं, तो मैंने पोल्ट्री फार्म चालू किया हूं। पहले मैं खुद करूं तो मेरे से देख के लोग जागरूक हों। मेरे हर बर्थडे या जन्म से मैं पौधे लगाता हूं, तो मेरे 60-70 पौधे आम के तैयार हैं। मिश्रित खेती करता हूं, लोगों को भी इसके लिए जागरूक करता हूं। और लोगों किसानों को मैं हमेशा जैविक खेती के विषय में ही बोलता हूं कि आप जैविक खेती कीजिए, आप मुर्गी पालन कीजिए, दूध का उत्पादन कीजिए, जिससे कि आप अभी जैसे किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, उसको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद मालिक हो, आप दूसरों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैं अपना एक बेहतर प्रयास करता हूं कि लोगों को समझाइश दूं उनको कि अपना स्वयं निर्माण करें, जिससे कि उनकी आमदनी तो होगी साथ साथ में, उसमें गांव का विकास भी होगा और लोग खुशहाल और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
1: बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और ऐसी सोच के हमारे जनप्रतिनिधि अगर हर पंचायत में मिल जाए तो मुझे लगता है कि आज हर ग्राम जो है वो आत्मनिर्भर ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से गाँव से होते हुए शहर और शहर से हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा।
0: बात और चाहूंगा सर कि मेरे अथक प्रयास से मैं अभी आनंद विभाग एक होता है भारत सरकार का, जिसमें मैं प्रशिक्षण भी लिया हूँ मैंने 6 महीने का, जिसमें कि गांव को एक आनंद ग्राम होता है सर, आनंद ग्राम के नाम से भी इसको घोषित करवाया हूँ मैंने भोपाल में प्रशिक्षण लेकर। मध्य प्रदेश जन अभियान के थ्रू वहाँ के लोग भी आते हैं, उनके थ्रू भी एक आदर्श ग्राम का हमको पराशे ब्लॉक में आदर्श ग्राम ढाला घोषित होने जा रहा है, उसके लिए प्रयासरत हैं हम। पूरी टीम हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके साथ हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी सब चीज पर्याप्त हो सके।
1: आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्वयं चलकर आपके ग्राम में आई है, आपके ग्राम पंचायत पहुंची है
0: जी।
1: आपको सुनने वाले जिले के तमाम श्रोताओं को, किसान भाइयों और बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सबको बस एक ही बात कहूंगा कि सब अपना आत्मनिर्भर बने। अगर आपके पास स्वयं का रोजगार होंगे तो आप अपना जीवन खुशहाली से जीवन बिता पाएंगे, और लोगों को भी जागरूक करें, जैविक खेती के प्रति लोग उत्तरदायित्व बने, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
1: ठीक है, अब आपसे लेते हैं विदा और आगे हम बढ़ते हैं। रजनीश भैया राम राम।
0: राम राम, जय जवान जय किसान।
2: तो किसान भाई, जैसे कि आपने देखा कि हमारे ग्राम ढाला के सरपंच बहुत ही ऊर्जावान हैं, युवा हैं, अपनी इस शक्ति का प्रयोग वो ग्राम के कल्याण के लिए कर रहे हैं। काफी अच्छी भावी योजनाएं उनकी हैं ताकि ग्राम का जो विकास है सुचारू रूप से हो सके। सरपंच जी की मदद करने के लिए होते हैं हमारे सचिव साहब, जो योजनाओं को लागू करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लोगों तक पहुंचाने में, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: तो आप सचिव के पद पर कब से ग्राम ढाला में?
1: मैं सचिव के पद पर ग्राम ढाला पे 2019 से हूँ सर।
0: अच्छा, काफी समय हो गया आपको यहाँ पर। और देखिए, आपसे हमने ये पूछ लिया कि आप कब से हैं, ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या, आपका शुभ नाम क्या है?
1: नेमी चंद्र राय जी।
0: जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि काफी अच्छी तरह से ग्राम में योजनाओं पर कार्य चल रहा है, तो अभी खास आपका जो फोकस है, किस योजना पर ज्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर काम चल रहा हो अभी?
1: अभी वर्तमान में हितग्राही मूलक ही योजना चल रही है, जिसमें वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पे पीएम आवास चल रहे हैं। इस वर्ष पीएम आवास हमारे यहाँ पे 72 हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृत हुए थे
0: जी।
1: जो कि लगभग पूरे होने को है। मतलब यहाँ पे योजना चालू है तब से लगभग 107 हितग्राही के मतलब पीएम आवास बन चुके हैं।
0: और खेत तालाब का कैसा चल रहा है?
1: खेत तालाब में सर ऐसा है, पिछले वर्ष 2 हितग्राहियों के खेत तालाब स्वीकृत हुए थे जो कि दोनों कम्प्लीट है। और इसके साथ साथ में पंचायत विभाग में जो है उसमें हमारे यहाँ पे पेंशन योजना चलाई जाती है जो कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, मध्य प्रदेश शासन से कल्याणी पेंशन चलाई जाती है। ऐसे पेंशनधारी हमारे यहाँ पे 185 लोगों को पेंशन प्राप्त हो रही है।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन की जो आपने बात की, इसमें किस तरह का प्रावधान है और कौन इसका लाभ ले सकता है?
1: कल्याणी पेंशन में ये है सर कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अगर वो शादीशुदा महिला है और किसी कारण से उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो 18 वर्ष के ऊपर से मतलब जब भी जैसे किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उसको कल्याणी योजना का लाभ दिया जाता है प्रतिमाह 600 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से।
0: तो किस तरह से उन्हें आवेदन करना होता है इसमें?
1: जैसे जो भी महिलाएं के पति खत्म हो जाते हैं वो हमारे पास आके संपर्क करती हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के उसको ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, उसके बाद में जनपद से वो पेंशन स्वीकृत हो जाती है।
0: तो अभी जनगणना भी जैसे हमारे जिले में प्रारंभ है, चल रही है, तो उसको लेकर कैसी गतिविधियां हमारे यहाँ हुई, क्या जनगणना हो गई है या चल रही है, किस तरह से काम चल रहा है?
1: प्रथम चरण चालू है सर अभी प्रथम चरण चालू है जिसमें मकान नंबरिंग हुई, उसके बाद में फिर से मकान नंबरिंग होकर बाद सेकंड चरण अभी सितंबर में चालू होगा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
0: हर व्यक्ति जो है पात्र जो है योजनाओं से जुड़ सके, उसका लाभ ले सके, निश्चित रूप से उसमें एक जागरूकता होनी चाहिए। तो आप हमारे जो ग्रामीण आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये योजना तो लगभग हर ही गांव में हमारे जिले में चलती हैं, आपके गांव में जैसे चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं से योजनाओं का लाभ लेने को लेकर?
1: हमारा प्रयास रहता है कि प्रसार प्रसार की आवश्यकता अधिक है। हम तो कोशिश करते हैं कि कोटवार के माध्यम से या मुनादी के माध्यम से जो भी योजना चलाई जाती है ग्राम सभा के माध्यम से उनको पर्याप्त जानकारी दी जाती है और उसके बाद में हितग्राहियों को प्रेरित किया जाता है कि बाद आप आइए और योजना के संबंध में जानकारी लीजिए, अगर पात्र पाए जाते हैं तो उनको योजना को लाभ दिया जाता है।
0: चलिए, आपने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की और सरपंच साहब के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम विकास के लिए जो अपना समय दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम जी।
3: तो रजनीश भैया, पंचायत में हमने सरपंच साहब से, सचिव साहब से बात की, ग्राम विकास पर बहुत ही अच्छी और जरूरी बातें हमारी हुई। और देखिए, पंचायत के पीछे ही खेती लगी हुई है, हमारे किसान भाई भी हमें नजर आ रहे हैं।
0: हाँ, वो हमें खेती में कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं और चले तो उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कुलदीप भैया,
3: चलिए भैया। राम राम।
4: राम राम जी।
3: हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आपके ग्राम में आए हुए हैं, तो अभी आपकी खेती बाड़ी में और बोनी वगैरह की आपकी तैयारी हो चुकी है?
4: जी जी, कुछ बोनी भी हो चुकी है और कुछ अभी चल रहा है बोनी का काम।
3: जब हमारी गर्मी आती है और हम लोग फसल नहीं लगाते हैं, जमीन को खाली छोड़ देते हैं और फिर हमारी जो खरीफ की फसल होती है उसकी हम तैयारी करते हैं, तो उस अवधि का क्या महत्व मानते हैं आप?
4: उस अवधि में हम अपनी जमीन को, कुछ लोग प्लाउर चला के छोड़ देते हैं, कुछ लोग कल्टीवेटर को डबल करा के छोड़ देते हैं, आने वाले समय के लिए वो धूप अच्छे से शोषण कर ले ताकि आने वाले समय की जो उपज है वो अच्छे से दे सके।
3: अच्छा, हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कहते रहते हैं हमारे किसान भाइयों को कि बीज जो है खरीदते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक किसान जब किसी बीज को खरीदने जाता है तो उसे मूल रूप से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
4: अच्छी क्वालिटी का बीज, हम जो बीज खरीदते समय दुकानदार से पूछते हैं कि इसकी अवधि समाप्त तो नहीं हुई, बीज प्रमाणित हो, अच्छी उपज दे सके, इस प्रकार का बीज लेते हैं।
3: ये बताइए कि ग्राम ढाला आज हम आए हुए हैं, तो ग्राम ढाला की कुछ विशेषताएं हैं?
4: जी, हमारे गांव में ज्यादातर लोग धार्मिक विचार को लेकर के रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में जो हनुमान दादा है तो उसके चलते हर व्यक्ति के मन में ये विचारधारा

0: आती है कि जब भी अगर सुबह हो तो जाकर के पहले भगवान को नमस्कार करें हनुमान दादा को, और एक दूसरे से बढ़िया प्रेम भाव से मिलते जुलते हैं, आपस में एक दूसरे से मशवरा लेते रहते हैं। जो भी योजनाएं आती है तो सरपंच है, सचिव है, किसान मित्र है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये सारी योजनाओं की जानकारियां हमको देते रहती है, और जो भी आवश्यकता के हिसाब से हमको जरूरत पड़ी उनसे सहयोग भी लेते हैं।
1: अरे आपसे बातें करते करते हम आपका नाम ही पूछना भूल गए, आपका शुभ नाम?
0: जी मेरा नाम गोकुल प्रसाद पहाड़े।
1: तो जो हमारे जिले के सभी किसान भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको मैं यही कहूंगा कि खेती थोड़ी लगन से करें और निष्ठा से की गई खेती में कभी घाटा नहीं होता।
1: आपकी बातों को हम सारे श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम।
0: जय राम जी की।
2: जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हम यहाँ एक बात कर रहे हैं ग्राम ढाला में। जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: क्या नाम है आपका?
3: श्रीमती सत्यभामा डहरिया।
2: कितने बच्चे हैं आपकी आंगनवाड़ी में?
3: मेरी आंगनवाड़ी में 83 बच्चे हैं, 0 से लेके 5 साल तक।
2: तो सभी आते हैं आंगनवाड़ी?
3: हाँ आते हैं, THR देते हैं उन लोगों को, मंगलवार की मंगलवार पोषण आहार पाते हैं, बाकी बच्चे प्रतिदिन आते हैं।
2: किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप यहाँ पर किस तरह की उन्हें सहायता देते हैं?
3: उनके स्वास्थ्य के लिए उनको आयरन की गोलियाँ वितरण की जाती है, आयरन, कैल्शियम।
2: और पोषण उनका अच्छा बना रहे उसके लिए?
3: उनको खान पान की समझाइश देते हैं कि मतलब नींव मजबूत रहेगी तो आगे का विकास होगा, शरीर के लिए खान पान में ध्यान देना, हरी साग सब्जी आयु अनुसार, है ना, दिन में 2-3 बार खाना उनको खाना जरूरी है।
2: आंगनवाड़ी में बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और उनके माता पिता उनको भेजें तो किस तरह के प्रयास रहते हैं आपके उसके लिए?
3: उनको समझाइश ये देते हैं कि देखिए आंगनवाड़ी में जो बच्चा जाएगा प्रतिदिन उनकी नींव मजबूत होगी, क्योंकि माता पिता को छोड़ के 2.5-3 घंटे बच्चा आंगनवाड़ी में रहता है तो उसकी क्या होती है, नींव मजबूत होती है। खेल खेल में उनको शिक्षा दी जाती है ना, जो बच्चा जैसे घर में कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं लेकिन यहाँ बच्चों के साथ में गोल में बैठ के वो लोग खाना भी खाना सीखते हैं, जिससे उनका शरीर का भी विकास होता है ना, मानसिक विकास शारीरिक विकास आंगनवाड़ी से ही शुरू हो जाता है बच्चों का।
2: अच्छा वातावरण उनको यहाँ पर दिया जाता है जिसमें उनके व्यक्तित्व के विकास की जो शुरुआती चरण है वो यहाँ पर उन्हें प्रदान किया जाता है, ऐसा माहौल उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सहायिका भी होंगी जो आपकी मदद करती होंगी,
3: है ना?
2: चलिए उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं।
3: दोनों।
2: जी नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
2: आपकी क्या भूमिका होती है आंगनवाड़ी में?
4: सर मेरी भूमिका रहती है, मैं सबसे पहले 8:30 आंगनवाड़ी आती हूँ, ताला खोलने के बाद साफ सफाई करना है, फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना है, उसके बाद फिर बच्चे लेकर आना है, और बच्चे लाने के बाद उन्हें थोड़ी देर खिलाना, फिर नाश्ता करवाना, जैसे नाश्ता आता है
2: मतलब तो। जो भी गतिविधियाँ होती हैं आप उसमें उनकी सहायता करें।
4: जी सर।
2: चलिए आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
4: राम राम सर।
2: आपको भी धन्यवाद। राम राम।
3: जी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कुलदीप भैया जिन्होंने भी हमें पत्र लिखकर इस गांव में आने के लिए बुलाया था।
5: हाँ रजनीश भैया, ग्राम ढाला तो हमने देखे नहीं थे
6: बिल्कुल,
5: लेकिन ढाला हम भैया के पत्र पे आए थे, उनका नाम तो बताओ हमारे
2: भैया हमारे श्रोता
5: है। पत्र पर आए हैं।
2: जी उनका नाम है सहदेव भूंडे और हमारे श्रोता भी उनका नाम अक्सर अपने कार्यक्रमों में सुनते होंगे, खास करके किसान वाणी में और जो फरमाइश के कार्यक्रम होते हैं। चलिए अब उनके घर चलते हैं हम।
5: तो आपको घर पता है?
2: हाँ भैया मेरे को घर पता है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे किसी ने बताया था कि सहदेव भूंडी जी के घर वो सामने है, तो बस अपन उनके घर पे आ ही गए हैं। भैया कोई है क्या घर पे? अभी नमस्कार।
7: नमस्कार सर जी।
2: आप सहदेव भूंडी जी?
7: जी।
2: आपको अभी तक हमने सिर्फ पत्रों के माध्यम से आपका नाम जाने थे, आज आपको हमने देख भी लिया और आपके पत्र भी नियमित आते रहते हैं।
7: जी।
2: चाहे वो किसानवाणी के कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो फिल्मी संगीत का जो कार्यक्रम हो, या जितने भी हमारे आकाशवाणी से कार्यक्रम जो जिसमें पत्रात्मक जो कार्यक्रम है उसमें अक्सर आपका जो है उल्लेख होता रहता है। ये बताइए कि कैसे हैं आप अभी?
7: बढ़िया हैं सर जी।
2: खेतीबाड़ी करते हैं आप भी?
7: हाँ सर जी खेतीबाड़ी करते हैं।
2: कितनी जमीन है आपकी?
7: लगभग 3 एकड़।
2: 3 एकड़। और आपके साथ एक नाम और आता है
7: जी,
2: वो शायद आपकी पत्नी है
7: जी, सरिता भोंडे।
2: हाँ सरिता भोंडे जी का नाम भी आपके साथ आता जी, वो भी यहीं पर हमें दिख रही हैं जी। नमस्कार।
8: नमस्कार सर जी, मेरा नाम सरिता भोंडे है।
2: बिल्कुल आपका नाम हम अक्सर अपने किसान वाणी में जो खास करके लोकरंजनी है उसमें आप दोनों के पत्र आते रहते हैं।
5: रजनीश भैया भोंडे जी हमेशा हमें अक्सर पत्र लिखते हैं।
2: बिल्कुल।
5: और उन पत्रों में लिखे हुए नाम हम कहते हैं कि आज भोंडे जी की ये फरमाइश है, आज भोंडे जी की ये फरमाइश है, तो आज उन्हीं से हम नाम सुनते हैं और वो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं ये भी हम सुन लेते हैं।
2: चलिए उनसे पूछते हैं।
7: मेरे पत्र में जो नाम लिखता हूँ सबसे पहले लिखता हूँ सहदेव भोंडे, मेरी पत्नी श्रीमती सरिता भोंडे, बेटी श्रद्धा भोंडे, बेटा जो है वो अभय बासु भोंडे, और भाई बलराम भोंडे, दिशा भोंडे, सरिता भोंडे, अभिजीत भोंडे।

0: सोनू भोंडे, दद्दू भोंडे, दोस्त ओम प्रकाश डहरिया और श्रीमती किरण डहरिया।
1: चलिए, आप जो पत्र में अपने नाम लिखते हैं, आपसे स्वयं से सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आकाशवाणी के, जैसे कि आपको पता हो कि 90 साल इस साल पूरे हुए, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे आकाशवाणी के इस लंबे सफर को लेकर?
0: 90 वर्ष जो हुए बहुत अच्छा लगा कि उस 90 वर्ष में हम भी जुड़े हैं, लगभग नहीं तो 27-28 वर्षों से हम भी खत लिख रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा को। इससे सर जी बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जो 90 वर्ष से जो जुड़े हैं लोग और उनके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, सब लोग अच्छे से पत्र लिखें, आकाशवाणी से जुड़े रहें, आकाशवाणी के श्रोताओं को और जो अच्छे अच्छे पत्र लिखें और आकाशवाणी अच्छा अच्छा कार्यक्रम प्रसारण करें, सुनाते रहें। और 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी छिंदवाड़ा को बधाई देता हूँ।
2: मैं सरिता भोंडे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आकाशवाणी से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और भी अच्छे प्रसारित हो, बस यही आशा करती हूँ। इन कार्यक्रमों से हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे साथ साथ हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, जो भी अच्छी जानकारी मिलती हैं उसको हम हमारे बच्चों को भी सुनाते हैं और वो उसमें अमल भी करते हैं। इसलिए उम्मीद रखते हैं कि आकाशवाणी इसी तरह बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करते रहें और आगे आशा रहेगी कि हम इन कार्यक्रमों में हम भी खरे उतरे और आकाशवाणी भी खरी उतरे।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बातें सरिता जी ने कही, सहदेव भैया ने भी अच्छी अच्छी बातें कही
3: और एक परिवार में आकाशवाणी का कितना महत्व है इस बात को भी उन्होंने समझाया कि ये आकाशवाणी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है,
1: सूचना शिक्षा मनोरंजन
3: संस्कारों को भी दूसरी जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में प्रेषित करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके भैया। नमस्कार, राम राम।
0: राम राम
1: आपको भी। राम
2: राम राम राम जी।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: भोंडे जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और चाय पानी भी हो गई हमारी। देखिए आज आकाशवाणी आई तो भोंडे जी ने हमारी आवभगत भी की और गांव में आगे भी तो बढ़ना है।
4: बिल्कुल आगे बढ़ना भी है
3: तो आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे किसान भाई से हम मिलते हैं। भैया राम राम।
5: राम राम।
3: क्या नाम है आप?
5: मेरा नाम धर्मदास भोंडे है और मैं पूर्व में किसान मित्र रहा। शासन की जो योजनाएं रहती थी तो किसानों तक पहुँचाते थे, जैसे की हम मिट्टी परीक्षण करवाते थे समय समय पे।
3: तो धर्मदास भैया, शासन की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है मिट्टी परीक्षण की, उस पर कृषि मित्र किस तरीके से अमल करते हैं?
5: शासन की योजना मिट्टी परीक्षण के लिए है क्योंकि किसान ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करता है तो उनके लिए मिट्टी परीक्षण करवाते हैं हम लोग और मिट्टी लैब में भिजवाते हैं। लैब में भिजवा के और उसमें उनका नाम पता किस टुकड़े का मिट्टी का परीक्षण हुआ है और लैब तक पहुँचाते। लैब के बाद में उनका किसान कार्ड बन के आता है, उन किसानों को ये पता चलता है कि मेरी मिट्टी पे क्या कमी है, मुझे कौन कौन से तत्व देना है और अनावश्यक मैं खाद बीज का दुरुपयोग ना करूं।
3: आप तो खुद ही कृषि मित्र रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम ढाला के जो किसान हैं वो आधुनिक खेती तो कर रहे हैं लेकिन जैविक खेती की तरफ उनका क्या रुझान है?
5: जैविक खेती उस तौर पे हो सकती कि हमारे गांव में पशुधन होना चाहिए। पशुधन रहेगा तो दूध का उत्पादन होगा, उससे जो गोबर से खाद बनेगी, खाद बनेगी तो हम लोग रासायनिक और पेप्टिसाइड पे निर्भर नहीं रहेंगे। इससे किसानों को पैसे में आमदनी होगी और पैसे भी बचेगा, पर सबसे मुख्य कारण है कि पशुधन होना चाहिए किसानों के पास पे।
3: तो आप कैसे प्रेरित करते हैं उन्हें कि जैविक खेती की तरफ आप आगे बढ़ें?
5: उनको प्रेरित करते हैं हम लोग कि भाई आप थोड़ा सा पे करिए, भाई आप जैसे कि 3 रकबा है आपका खेत है तो 1 टुकड़े पे अपने परिवार के लिए जैविक खेती करें ताकि उससे जो अनाज उत्पन्न हो या फल उत्पन्न हो तो उस स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है।

0: और डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहते हैं क्योंकि वो खुद की उगाई सब्जियां रहती है।
1: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। चलिए, अब चलते चलते आप हमारे जिले के सभी श्रोताओं से, किसान भाइयों और बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उन्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे घर में, परिवार में सबके यहाँ रहते हैं, तो उन्हें शिक्षा की ओर ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख के वो आत्मनिर्भर बने और अच्छे चेयर पे बैठे, अच्छी यूनिवर्सिटी पे पढ़े। समय समय पे विज्ञापन पे ज़्यादा ध्यान दें कि भाई जो दैनिक भास्कर में योजनाएं आती है, विज्ञापन पे आती है, तो विज्ञापन पढ़ना चाहिए और विज्ञापन पढ़ के अपने बच्चों को लाभान्वित करना चाहिए।
1: चलिए, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। अब चलिए, रजनीश भैया, हमारे धर्मदास भैया से भी लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम।
0: राम राम सर जी।
1: और रजनीश भैया, आगे जब हम बढ़े तो देखिए कि स्कूल नजर आ रहा है,
2: बिल्कुल,
1: और एक रसोई घर भी हमें नजर आ रहा है,
2: बिल्कुल।
1: तो स्कूल में भी हम प्रवेश करते हैं तो रसोई घर में देखिए बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं और शायद लगता है कि इनकी कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है। सभी बहनों को राम राम।
3: राम राम सर जी। राम राम।
1: क्या नाम है आपका?
4: तिजिया भाई मरकाम।
3: मेरा नाम है अनीता बघेल।
4: सीवती उइके।
1: आपकी लगता है कोई मीटिंग चल रही है?
4: जी सर।
1: किस बात की मीटिंग चल रही है?
4: मीटिंग रखे सर, सब भाई बैठे हैं और अब स्कूल चालू हो रहा है, तो अब क्या बजट बनाए और व्यवस्था आने की महीना भर का सामान।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्वसहायता समूह चलाती हैं आप? किस पद पर हैं?
4: अध्यक्ष पद में सर।
1: तो कब से हैं आप?
4: 15 साल हो गए सर।
1: तो ये जब से ये स्वसहायता समूह चल रहा है तो ये इस योजना के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था, स्वसहायता समूह, जिससे महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और थोड़े बहुत आर्थिक लाभ ले सके। तो स्वसहायता समूह चलाने से आप सभी महिलाओं को फायदा होता है?
4: जी सर, मजदूरी मिली है।
1: अच्छा, मतलब धीरे धीरे कुछ तो फायदा होता होगा। आप किस पद पर हैं?
3: रसोइया के पद पे है सर जी।
1: देखिए, रसोइया मध्याह्न भोजन योजना जब चलती है तो रसोइया का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्कूल के बहुत सारे बच्चों का जीवन जुड़ा होता है, ताकि उसमें सफाई से खाना बन सके, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आप सारी चीजों का पालन करती हैं?
3: हाँ सर जी, सब चीज़ का पालन करते हैं। हम आते हैं, साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता सब पूरी साफ करने के बाद में पानी लाते हैं साफ हेडपम्प से, फिर बच्चों के लिए नमकीन दलिया बनाते हैं, फिर उसके बाद में भोजन तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सब स्कूल में वितरण करते हैं।
1: जो सप्ताह भर का मीनू होता है, तो मीनू अनुसार भोजन बनाया जाता है?
3: हाँ सर, हम मीनू के अनुसार ही भोजन बनाते हैं। सोमवार दिन हमारे आंगनवाड़ी में मीठी दलिया बनती है, मंगलवार दिन बनाते हैं पौष्टिक खिचड़ी। नाश्ता में पहले खिचड़ी देते हैं और उसके बाद में फिर भोजन देते हैं 1 बजे, और बुधवार दिन भी नमकीन दलिया बनती है, और शुक्रवार दिन हमारे यहाँ नमकीन पौष्टिक खिचड़ी बनती है, और शनिवार दिन भी मीठी लपसी बनती है और खीर पूड़ी बनाते हैं भोजन में।
5: तो कितने बच्चों का भोजन पकाया जाता है रोज़?
3: रोज़ हमारे यहाँ पर 300 बच्चों का भोजन पकाया जाता है। आंगनवाड़ी में 60 बच्चे हमारे यहाँ ढाला की आंगनवाड़ी में, फिर दूसरी मिनी आंगनवाड़ी हमारे ढाने में है, वहाँ पर है 25 बच्चे, फिर काना वैसा है एक हमारा छोटा सा गांव, वहाँ भी जाना पड़ता हम लोग को भोजन तैयार करके देने के लिए।
5: तो लगभग यानी सब मिलाकर कितने बच्चे हो गए? कम से कम
3: सबरे हमारे 300 बच्चे होते हैं।
5: 300 बच्चे होते हैं जिनका भोजन आपको रोज पकाना होता है?
3: बनाते हैं हम, 5 रसोइया हैं, तो तीनों पांचों मिलकर हम देते हैं सब इकट्ठा।
5: तो आपके समूह का कोई नाम भी है क्या?
3: हमारा समूह है ना सर जी, हमारा समूह का नाम है महिला जागृति स्वसहायता समूह।
5: तो कितनी महिलाओं का समूह है?
3: हमारा 10-12 महिलाएं का समूह है, तो जिसमें से हम अभी 6 महिलाएं काम करते हैं, खाना बनाते हैं, और 6 महिलाएं हमारे घर में और भी रोजगार है, खेती बाड़ी का है, घर का है, थोड़ा वो घर का काम संभालते हैं। जैसे हमारे पास में अगर कोई समस्या आ गई तो हमारी महिलाएं भी आके हमको सहयोग करती हैं, हमारे साथ वाले समूह वाले, तो ऐसे मिल बांट के हम समूह वाले काम करते हैं।
5: तो जो खाना बनाते हैं आप, जो ईंधन क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी पे बनता है गैस पे बनता है?
3: सर जी, हम आधी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और आधी गैस करते हैं,
5: दोनों ही तरह से बना
3: करते हैं दोनों। रोटी की भट्टी भी है हमारे पास, चूल्हा वाली बड़ी भट्टी जिसमें रोटी पकाई जाती है। जैसा गैस नहीं मिलता तो हमको फिर लकड़ी लाके बनाना पड़ता है।
5: आपके साथ एक और महिला, इनसे भी परिचय करते जी, आपका क्या नाम है?
6: तिजिया मरकाम।
5: तो आप भी मदद करती हैं खाना बनाने में?
6: जी।
5: तो आप खाना बनाने में मदद करती हैं या फिर मतलब साथ में जो ईंधन की व्यवस्था है या बच्चों तक पहुंचाना, ये बच्चों तक पहुंचाया कैसे जाता है?
6: मैं नहीं पहुंचाती, मैं बना

0: खाते हैं।
1: जैसे हम इकट्ठा पांचों भाई बना लेते हैं और उसके बाद एक रसोईया निकलते हैं, तो मैं हूँ कान्हा वैसा की रसोईया, और यहाँ प्राइमरी मिडिल की दो दो रसोईया अलग हैं। तो ऐसे हम मिल बांट के एक समूह खाना बनाता है महिला जागृति, तो उससे हम लोग को वितरण करना पड़ता है।
2: साफ सफाई एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, स्वच्छता एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसको लेकर किस तरह के आप फिर उपाय करते हैं कि स्वच्छ खाना बच्चों तक पहुंचे, हाइजीन मिले उन्हें, अच्छे से पोषण अच्छा मिले?
1: सर जी, उसके लिए हम अच्छा पोषण हर खाना बनाते हैं, अच्छा वाला मसाला लाते हैं, और ये साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देते हैं, ढककर बनाते हैं, अच्छे पैक टिफिन है हमारे पास, बड़े बड़े डिब्बा, उसमें पैक करके हम टिफिन वितरण खाना करते हैं, और पैकेट में भर के अच्छे पैक करके रोटी पहुँचाते हैं। ऐसा हमारा डेली का काम है।
2: प्रशासन से आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल जाती
1: है? हाँ सर जी, मिल जाता है, महीना का महीना राशन डलता है हमारा, और जो समूह के द्वारा हमारा पैसा डलता है, तो वो हम हमारे टीचर अधिकारी लोग से सब प्रस्ताव साइन करवा के वो पैसा निकला के फिर हम खुद ही खरीद के लाते हैं अपने पास के पैसे से।
2: तो आप जो हमारे सुनने वाले उनसे क्या कहना चाहते हैं?
1: हम यही कहेंगे कि हमारी सब महिलाएं से, बहनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बच्चों को पहुँचाएँ और उनको स्कूल भेजें और समय पे उनका ध्यान दें, और उनको सभी तरफ से, हमारी तरफ से शिक्षा, हम अच्छे से खाना भोजन सब तैयार करके उनको समय पे देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब स्कूल और आंगनबाड़ी बच्चों को भेजें।
2: आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम सर जी।
2: आपको भी
3: राम राम सर।
4: और रजनीश भैया देखिए, ढाला में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक खेत तालाब हमें नज़र आ रहा है, और आपको याद होगा कि हमें सरपंच साहब ने बताया भी था कि इस बार दो खेत तालाब बने और एक में बहुत पानी है, तो ये अभी बहुत पानी जो नज़र आ रहा है ये वही खेत तालाब तो नहीं है?
5: बिल्कुल भी है। और एक किसान भाई इस खेत तालाब के पास जो नज़र आ रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या ये वही तालाब है।
4: जी भैया, राम राम।
6: राम राम
4: भैया, ये पंचायत के द्वारा बनाया गया खेत तालाब है क्या?
6: जी।
4: अच्छा, आपका है?
6: जी हाँ, मेरा।
4: क्या क्या नाम लिखते हैं?
6: मेरा नाम राजन प्रसाद मरकाम।
4: अच्छा अच्छा, मरकाम जी, खेत तालाब बनने के बाद क्या आपको फायदे नजर आ रहे हैं?
6: फायदे अभी आधा काम रह गया उसमें बनने का।
4: अच्छा।
6: खुदाई रह गई है, उसके बाद फिर पटाई वगैरह होगा।
4: बाकी पानी तो मुझे पर्याप्त नजर आ रहे हैं।
6: पानी तो अच्छा है, पानी सही है।
4: तो ये खेत तालाब बनने से क्या सिंचाई के लिए आपकी व्यवस्था बन जाएगी?
6: जी, सिंचाई के लिए व्यवस्था बन गई है।
2: जैसे कि सुनने में है कि पानी की थोड़ी सी कमी है हमारे, तो खेत तालाब बनने से किस तरह से आप फायदा आपको इसका मिलेगा, क्या उम्मीद करते हैं आप?
6: बस गेहूं में सिंचाई करने के लिए
4: जी
6: उपयोग में लेते हैं उसको।
2: बरसात में तो हमें पानी जो है खरीफ के सीजन में मानसून का मिल जाता है, लेकिन रबी के सीजन में मतलब जब पानी कमी रहती, कई लोग किसान फसल भी नहीं बो पाते उस समय, तो आपको उसका लाभ मिलेगा?
6: हाँ, उसका लाभ मिल जाता है।
2: तो आपकी जमीन कितनी है मरकाम जी?
6: 4 एकड़।
2: तो जब ये खेत तालाब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो कितनी ज़मीन आपकी जो है सिंचित हो जाएगी? फिर
6: आसपास की भी हो सकती है, अपनी छोड़ के दूसरे को भी दे सकते हैं पानी।
2: तो बहुत अच्छी बात है, मतलब खेत तालाब एक देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी आशा की किरण है खेत तालाब योजना। आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे?
6: श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि वो खेत तालाब अपने खेत में निर्माण करवाएं ताकि उनकी भूमि सिंचित हो।
2: ठीक है, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
6: राम राम।
2: जी राम राम।
7: राम राम जी।
2: भैया ये बताइए कि क्या शुभ नाम है आपका? आप हमें दिखे इस गांव में, तो हम सोचे कि आपसे भी थोड़ी बात कर लें।
7: मैं सूर्यवंशी।
2: अच्छा सूर्यवंशी जी, ये बताइए कि कितनी ज़मीन है आपकी?
7: अपनी 2.5 एकड़ ज़मीन है।
2: तो क्या क्या लगाते हैं आप अपने खेत में?
7: मक्का, गेहूँ की टाइम में गेहूँ लगाते हैं।
2: ये बताइए कि सिंचाई का क्या साधन है आपके पास?
7: अपने पास अभी तो डैम है।
2: तो बाकी खेती बाड़ी ठीक चल रही है आपकी?
7: ठीक चल रही है।
2: जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में?
7: हाँ करते हैं जी, जैविक खाद डालते हैं, गोबर खाद भी डालते हैं।
2: मतलब जैविक विधियों का भी आप गोबर खाद का इस्तेमाल इसमें करते हैं, सिंचाई के लिए आपको डैम से पानी मिल जाता है। पशुपालन करते हैं?
7: नहीं, पशुपालन तो मैं नहीं करता।
2: तो फिर आप गोबर का इंतजाम कहाँ से करते हैं जैविक खेती?
7: भाई से ले लेते हैं अपन।
2: अच्छा, आपके भाई पशुपालन करते हैं?
7: पशुपालन करते।
2: चलिए ये अच्छा है कि आप पशुपालन के साथ आपको खेती में फायदा हो जाता है, खेती से पशुपालन में भी फायदा होता है। तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आपको?
7: उनको कहना चाहेंगे कि वो भी अपना कार्य करें और वो भी अपनी उन्नति में प्रसिद्ध होए, समय समय पर देखते हुए सुचारू रूप से करें समय के हिसाब से।
2: आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
7: राम राम जी।
2: कुलदीप भैया।
4: हाँ रजनीश भैया।

0: देखिए भैया, ग्राम ढाला में एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा ये मंदिर है भगवान हनुमान।
1: ऐसा कहा जाता है कि ये काफी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है ग्राम ढाला का, और बहुत ही विराट स्वरूप में यहाँ पर हनुमान दादा की मूर्ति है।
0: चलिए इनके दर्शन करते हैं। और भैया यहाँ पर एक भजन मंडली भी यहाँ पर बैठी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल ग्राम ढाला की ये भजन मंडली है, और इनके माध्यम से हम एक भजन सुनते हैं।

0: रजनीश भैया, ग्राम ढाला में देखिए ना, सुबह से शाम हो गई
1: बिल्कुल
0: और हमने यहाँ के सरपंच साहब से, सचिव साहब से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से, किसानों से, स्व सहायता की महिलाओं से, कृषि मित्र से, जो हितग्राही हैं उनसे,
1: बातचीत की।
0: सभी से बातचीत की। अब ऐसा लग रहा है कि इस आनंद ग्राम ढाला से अब विदा लेने का समय आ चुका है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और मैं आनंद ग्राम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें सरपंच साहब ने बताया था कि ये आनंद ग्राम भी घोषित हो
1: हुआ
0: चुका है, तो इसीलिए हम एक बार फिर से कहते हैं कि आनंद ग्राम ढाला से विदा लेने का समय आ चुका है। तो कहते हैं कुलदीप भैया,
1: और रजनीश भैया की
0: राम राम, जय जवान, जय किसान।

अभी हम हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। रात के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम मेरी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम मेरी पसंद में मैं रंजनी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मेरी पसंद के गीतों का ये स्पेशल अंक समर्पित है हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिनकी धुनों ने पीढ़ियों को गुनगुनाना सिखाया। मेरी पसंद के ऐसे संगीतकार जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी वाद्य यंत्रों, लोक धुनों, जैज, रॉक और मधुर भारतीय रागों का अद्भुत संगम किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत के महान शिल्पी राहुल देव बर्मन की, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचमदा के नाम से जानती है। और आज है इस सुरों के जादूगर की जयंती यानी जन्मदिन। इसलिए दोस्तों, आज का मेरी पसंद कार्यक्रम समर्पित है आर डी बर्मन को।

दोस्तों, राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ। वे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मीरा देव बर्मन के पुत्र थे। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन गया। आगे चलकर उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया और भारतीय फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया। उनके संगीत में प्रयोगधर्मिता, नवीनता और मधुरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आइए पंचमधा की मधुर यादों को और इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं इस पहले मेरी पसंद के गीत के साथ।

दोस्तों, मेरी पसंद में गिटार की मधुर धुन, गिलास और चम्मच के अद्भुत प्रयोग, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सजा ये अगला गीत आज भी प्रेम गीतों की सूची में एक विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, गीत की शुरुआत में सुनाई देने वाली गिटार और ग्लास की ध्वनि पंचमदा की संगीत कल्पना का एक सुंदर उदाहरण है।

दोस्तों, गुलजार का दर्शन और पंचमदा के संगीत का अद्भुत संगम अब आप महसूस करेंगे मेरी पसंद के इस अगले गीत में। जीवन की क्षणभंगुरता को बेहद सरल शब्दों में और मधुर धुन में पिरोने वाला यह गीत हमेशा से ही हर उम्र के श्रोताओं के दिल को छू लेता है। किशोर कुमार की आवाज़ और पंचमदा का संगीत इसे कालजयी बनाते हैं।

श्रोतो, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद अपनी दोस्त रंजनी के साथ। दोस्तों, अब मैं सुनवा रही हूँ अपनी पसंद का वो गीत जिसे खुद आर डी बर्मन ने अपनी अनोखी आवाज में गाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गीत में स्पेशल साउंड इफेक्ट्स देने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया था और उनकी खुरदुरी लेकिन प्रभावशाली आवाज़ ने इस गीत को युवा और हर वर्ग के श्रोताओं में अमर बना दिया।

दोस्तों, मेरी पसंद का अगला गीत हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय कैबरे गीतों में गिना जाता है। आशा भोंसले और पंचम दा की जुगलबंदी और मोनिका ओ माय डार्लिंग कानों में गूंजती है दोस्तों।

0: Bonito.
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

अब सुनिए ये पसंद रॉक एंड रोल शैली का ये झूमता हुआ अगला गीत, हिंदी सिनेमा के सबसे तड़कते भड़कते गीतों में गिना जाता है। पंचम दा ने भारतीय संगीत में पश्चिम वाद्य यंत्रों का ऐसा प्रयोग किया है दोस्तों कि ये गीत आज भी उतना ही तरोताज़ा लगता है।

दोस्तों, मेरी पसंद के इस अगले गीत में आर.डी. बर्मन के संगीत की एनर्जी, धुन और प्रस्तुति का अंदाज इस नगमे को अलग ही पहचान देता है।

दोस्तों, मेरे पसंद का अंतिम गीत पंचमदा के जीवन के अंतिम दौर में रचा गया गीत था। उनकी अद्भुत संगीत संवेदना का प्रमाण है ये गीत, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुआ और आज भी उनकी अमर धुनों में गिना जाता है।

दोस्तों सचमुच आर डी बर्मन के बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि पंचम दा केवल एक संगीतकार नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। भारतीय लोक धुनों से लेकर पश्चिमी संगीत तक, रोमांस से लेकर गजल तक, लोकगीतों तक, हर शैली में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें अर्पित करते हैं और उनके अमर संगीत को नमन करते हैं। और अब मैं रंजनी कार्यक्रम मेरी पसंद से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गजलें। इसकी पहली पेशकश में आप सुनेंगे जगजीत सिंह को।

श्रोता राजेश जौहरी की लिखी और भूपेंद्र मिताली सिंह की गाई इसी खूबसूरत गजल के साथ अब संपन्न होता है गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 MHz पर। रात के 8:45 होने को हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान

0: की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख

0: तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार

0: में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाज़ें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से। आवाज़ें ऐश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज़ ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक

स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया। और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी। एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आएं, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर

कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुन

रोकने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज़्यादा, एक से मुसाफिर हैं एक सा मुकद्दर है। मैं ज़मीन पर तन्हा और वो आसमान में, आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू, दिल भी खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्सा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज़ की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसक।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आँखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आँखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आँखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच

0: एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Pätrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipore Zoo in Kolkata in 2014.